मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज और 104 मेगाहर्ट्ज एफएम पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 मई महीने की 25 तारीख दिन है सोमवार। आकाशवाणी के तवांग केंद्र से आज का हमारा प्रसारण अब आरंभ होता है। आज के इस प्रसारण को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री तेंजिन दोर्जी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री कामे यंगफो और श्री तानिंग ताको, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री अंटू कुमार दास और सुश्री शिखा डेका, मुनपा में उद्घोषक हैं श्री थुप्तन टाशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज का हिंदी उद्घोषक लाम टाशी। आकाशवाणी सुन रहे आप सभी श्रोताओं का आज के हमारे इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत है।

मीडियम वेव के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बज रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी एवं हिंदी में दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: किया गया। मौसम विभाग ने अगले तीन दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। दो पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
2: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी

0: प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम

बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।

0: आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। गीनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र NTA और CBI से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, में प्रस्तुत है भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनेंगे गुलशन कुमार प्रस्तुत चंद हिंदी भक्ति भजन। तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम वंदना।
3: माताओं, बहनों और सज्जनों, आज हम श्री राम जी के त्याग का प्रसंग शुरू करने जा रहे हैं। मेरी विनती है कि पहले आप सब मेरे साथ इस महामंत्र का उच्चारण कर मन पवित्र कर लें।

सीता फूल सी सुकुमारी जनक नंदिनी जिसने अपने पति धर्म का पालन करने के लिए क्या क्या नहीं सहा,

सीता जैसी पवित्र पतिव्रता आदर्श नारी को फिर से वनवास दे दिया गया और वह भी गर्भावस्था में। अंततः विरह वेदना सहती जानकी ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में दो सुंदर तेजस्वी बालक लव और कुश को जन्म दिया और फिर

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गुलशन कुमार प्रस्तुत चंद हिंदी भक्ति भजन। इसके साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
3: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाए। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
0: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय

दोपहर के 3:01 हुए हैं। आइए अब आनंद लेते हैं अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत का। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे बेंगिया हेमंता और ताना तरम तारा के आवाजों में चंद आधुनिक निशी नगमे। तो लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत बैंगिया हेमंता और ताना तरम तारा से चंद आधुनिक निशी नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से।

0: बेंगिया हेमंता और ताना तरम तारा के इन्हीं आधुनिक निशी नगमों के साथ ही अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। चलिए अब सुनते हैं कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग के 11वीं कक्षा की छात्री का कुमारी जोम्बा लाटुन से परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन विषय पर एक वार्ता।
1: आकाशवाणी तवांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं जोम्बा लाटुन, पीएम श्री जैनवी तवांग में कक्षा 11वीं की छात्रा। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप का विषय परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन है। दीपों की लो में उम्मीद जलती है, संस्कारों की खुशबू हर दिल में पलती है। परंपरा वो धरोहर है जो समय न मिटा पाए, संस्कृति वो रंग है जो हर युग में छा जाए। परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाना 21वीं सदी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं, जिससे मानव जीवन का संपूर्ण विकास संभव है। भारतीय समाज की पहचान उसकी समृद्ध परंपराओं और तेजी से बढ़ती आधुनिकता के मेल से बनती है। परंपरा हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है, जबकि आधुनिकता हमें समय के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। परंपरा हमारे संस्कारों, रीति रिवाजों, भाषा, संस्कृति और मूल्यों की वाहक होती है।

0: यह हमें नैतिकता, पारिवारिक एकता, गुरु शिष्य परंपरा और सामाजिक जिम्मेदारियों का बोध कराती है। यदि हम परंपराओं को पूरी तरह त्याग दे तो हमारी संस्कृति पहचान कमजोर हो सकती है और समाज दिशाहीन हो सकता है। दूसरी ओर आधुनिकता विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, समानता और स्वतंत्र सोच का प्रतीक है। आधुनिकता ने जीवन को सरल, तेज और सुविधाजनक बनाया है। स्त्री पुरुष समानता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, डिजिटल विकास और वैश्विक संपर्क आधुनिकता की ही देन है। यदि हम आधुनिकता को न अपनाएं तो समाज प्रगति की दौड़ में पीछे रह जाएगा। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम परंपरा और आधुनिकता को एक दूसरे के विरोधी मान लेते हैं। वास्तव में दोनों एक दूसरे के पूरक है। हमें ऐसी परंपराओं को अपनाना चाहिए जो मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देते हो, और उन रूढ़ियों को छोड़ना चाहिए जो विकास में बाधा है। इसी प्रकार आधुनिकता को अपनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह हमारी संस्कृति और नैतिक मूल्यों को नष्ट ना करे। अंत में आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि आज के बदलते समय में केवल परंपरा या केवल आधुनिकता पर निर्भर रहना उचित नहीं है। यदि हम परंपरा को पूरी तरह अपनाएं और आधुनिकता को नकार दे तो प्रगति रुक सकती है। इसीलिए दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है। मिट्टी की महक त्योहारों का रंग संस्कृति में बसता है जीवन का रंग। परंपरा हमें जोड़ती है पर पीढ़ी से ये बंधन अमर है हर एक सीरीज से। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग के 11वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी जोम्बाल हाटुन से परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन विषय पर एक वार्ता। इसके साथ ही कार्यक्रम मेरी बात अब समाप्त होता है।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:34 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत। नारी संगीत कार्यक्रम का पहला नगमा सुनिए टाइगर जिंदा है फिल्म से ज्योति नूरन के आवाज में। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है विशाल शेखर ने।

श्रोता, नारी संगीत कार्यक्रम का अंतिम नगमा सुनिए मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म से उदित नारायण की आवाज में। आदेश श्रीवास्तव द्वारा संगीतित इस गीत को लिखा है समीर अंजान ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:51 हुए हैं। श्रोताओं, आप सुनिए फिल्म जगत के नवगीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी।

अगला नगमा पेश है विशाल मिश्रा, जारा खान और रोमी की आवाजों में। बवाल फिल्म के इस गीत को लिखा है अराफात महमूद ने और संगीत दिया है तनिष्क बख्शी ने।

श्रीकांत फिल्म से सुनिए अगला नगमा जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार की आवाजों में। तनिष्क बख्शी द्वारा संगीतित इस गीत को लिखा है श्लोक लाल ने।

0: अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज में अभी आप सुन रहे थे हंसी दिलरुबा फिल्म का नगमा बोल किस्तिज पटवर्धन के और संगीतकार अमित त्रिवेदी। श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत फिल्म जगत के चंद नव गीतों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
2: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की। खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे। लगता था ऐसे ही चलेगा, पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी, आयुष्मान वह वंदना कार्ड से। आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5,00,000 तक के मुफ्त इलाज के हकदार।
3: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
0: श्रोताओं, अगला नगमा पेश है योद्धा फिल्म से विशाल मिश्रा के आवाज में। कौशल किशोर के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है विशाल मिश्रा ने।

जार का लिखा नगमा स्वर दिलजीत दोसांझ के और संगीतकार शंकर एजान लॉय। कार्यक्रम का अगला नगमा पेश है सैयारा फिल्म से विशाल मिश्रा और हंसिका पारिक की आवाजों में। गीतकार राजशेखर और संगीत दिया है विशाल मिश्रा ने।

पैडी फिल्म की इस नगमे के साथ ही फिल्म जगत के नवगीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। चलिए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग के अंतर्गत उस्ताद बिस्मिल्ला खान और साथियों से शहनाई वादन। राग है वृंदावनी सारंग और श्याम कल्याण।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे वृंदावनी सारंग और श्याम कल्याण राग पर उस्ताद बिस्मिल्ला खान और साथियों से शहनाई वादन। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब से चंद पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। अरुणाचल प्रदेश के जाने माने समाजसेवी तेजू गोविंद को आज नई दिल्ली में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में केंद्र, एनटीए और सीबीआई के जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि पिछले पेपर लीक मामलों से अभी तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान। ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले के लिए ऑरेंज एवं अन्य 16 जिलों के लिए गरज के साथ बिजली गिरने और तेज से बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है।

0: कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष।
1: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। अरुणाचल प्रदेश के जाने माने समाजसेवी तेजू गोविंद को आज नई दिल्ली में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। श्री गोविंद उन 113 विशिष्ट हस्तियों में शामिल है जिन्हें इस वर्ष पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है। लोक निर्माण विभाग में सेवानिवृत्त चीफ आर्किटेक्ट रहे श्री गोविंद को लोक सेवा, समाज सेवा और स्वदेशी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। दूरदर्शन पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण अब से कुछ ही देर में देखा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा है कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय परीक्षा जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। एक रिपोर्ट।
2: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं।
1: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी फिजिक्स के लेक्चरर मनीषा संजय हरबलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय परीक्षा सीयूईटी की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा है कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा है कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध करने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया है कि पूर्ण मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। विधेयक में ये प्रावधान है कि असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होता है। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक के पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव भी है जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, वित्तीय और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया।
2: मुख्यमंत्री की ओर से मैंने आज सदन में यूसीसी पेश किया है। माननीय मुख्यमंत्री ने प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि यदि वे सत्ता में आते हैं, यदि एनडीए सत्ता में आता है तो इसे आज हुए पहले सत्र में ही पेश किया जाएगा।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। आज रात पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में रात का मौसम गर्म रह सकता है। इस बीच आज पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में भी कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले के लिए ऑरेंज एवं अन्य 16 जिलों ईस्ट कमिंग, वेस्ट कमिंग, पाके केसांग, पापुमपारे, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, सियांग, अपर सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लेपारादा, लोहित, नामसाई, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और तेज से बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल 102

0: रुपए 12 पैसे और डीजल 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर में प्राप्त हो रही है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान में लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा है कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। सरकार ने नागरिकों को ऐसे भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को भी कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अन्य विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति के हर मौके देंगे। हॉर्मुज जलदमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान और अमेरिका एवं इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद हॉर्मुज जलदमरू मध्य बाधित हुआ है। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मितेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर भारत की तरफ से कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट।
0: नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की रही है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैक्सन कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी शामिल हैं। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शुभशाची वर्चाजी। President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in 3 categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. This year the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women while 16 individuals will be awarded posthumously. The Supreme Court today expressed concern over repeated lapses in the conduct of the NEET examination, saying that it was sad that the National Testing Agency had not learnt any lesson from the earlier paper leak controversy. A bench of Justices P.S. Narasimha and Alok Arade sought responses from the Centre, the National Testing Agency and the CBI on petitions demanding replacement of the testing agency with a more robust and autonomous body to conduct the medical entrance examination. The court directed the NTA to file an affidavit by Thursday detailing compliance with the recommendations made last year by a committee headed by former ISRO chief K. Radhakrishnan for overhauling the agency's functioning. A Delhi court has sent Pune-based physics lecturer Manisha Sanjay Havaldar to 6 days of CBI custody in the NEET UG paper leak case. Special Judge Ajay Gupta allowed the CBI's pleas seeking custodial interrogation of the accused.

मीडियम वेव के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या की 6:10 हुए हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में पहले सुनिए एक जरूरी सूचना। जिला निर्वाचन अधिकारी तवांग के कार्यालय से प्राप्त परिपत्र अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार अरुणाचल प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का तीसरा चरण आयोजित किया जा रहा है। SIR के इस तीसरे चरण का विवरण, तिथियां एवं समय सीमा कुछ इस प्रकार तय किए गए हैं। SIR की पात्रता तिथि है आगामी 1 जुलाई 2026। तैयारी, प्रशिक्षण और छपाई की तिथि आगामी 5 जून 2026 से 14 जून 2026। BLO द्वारा घर घर जाकर सत्यापन की तिथि आगामी 15 जून 2026 से 14 जुलाई 2026। मतदान केंद्रों का युक्तिकरण आगामी 14 जुलाई 2026। प्ररूप मतदाता सूची का प्रकाशन तिथि आगामी 21 जुलाई 2026। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि आगामी 21 जुलाई 2026 से 20 अगस्त 2026। दावों और आपत्तियों का निस्तारण अवधि आगामी 21 जुलाई 2026 से 18 सितंबर 2026 तक और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा आगामी 22 सितंबर 2026 को। जिला निर्वाचन अधिकारी तवांग द्वारा जारी सूचना समाप्त हुआ। आइए श्रोताओं, अब आपको हमारे केंद्र के आज के शेष एवं कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। अब से कुछ ही पलों में यानी संध्या के 6:20 पर कार्यक्रम येदोन लेरिम में सुनिए तवांग मठ के पूर्व दर्शन शिक्षक गेशी थुपतेन गेनुन जी से शरण लेना, शरण लेने का कारण, शरण की वस्तुएं और ध्यान की विधि विषय पर दिए वार्ता का शेष भाग। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 7 तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज शाम 7:10 पर कृषि संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण में सुनिए कृषि विज्ञान केंद्र तवांग के बागवानी विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अभिमन्यु चतुर्वेदी से क्रूसीफेरी कुल के फसलों की वैज्ञानिक खेती के पद्धतियों के विषय पर हुई भेंट वार्ता। वीर सैनिकों पर आधारित कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत में आनंद लीजिए बाग मिल्खा बाग फिल्म से जावेद बाशीर, सुल्तान फिल्म से राहत फतेह अली खान और ऊंचाई फिल्म से अमित त्रिवेदी के आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे आज शाम 7:30 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक

समाचार शाम 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। आज शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत में सुनिए राजी फिल्म का एक देशभक्ति नगमा। रात्रि 8 आनंद लीजिए व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। श्रोताओं, ये तो थे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। चलिए अब आपको हमारे केंद्र से कल यानी 26 मई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले चंद कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। रोजाने की तरह कल दोपहर 2 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार, तत्पश्चात हिंदी में समाचार 2:15 पर। भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना में सुनिए लामा रिंचिन सेवांग और लामा दोर्जी फुनसोक से बौद्ध भक्ति भजन कल दोपहर 2:30 पर। चंद आधुनिक आसामिया नगमों का आनंद लीजिए भूपेन हजारिका के आवाज में कल दोपहर 3 कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात में सुनिए पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग के 8वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी तिनजिन दासिल से जीवन में संगीत के महत्व विषय पर एक वार्ता। महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत में सुनिए निर्जा फिल्म से कविता सेठ, हिचकी फिल्म से अरिजीत सिंह, दावते इश्क फिल्म से शालमाली कोलगारे और जब हैरी मेट सेजल फिल्म से सुनिधि चौहान और शाहिद मालिया के आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे कल दोपहर 3:33 पर। कल दोपहर 3:50 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी में आनंद लीजिए आशिकी 2 फिल्म से अरिजीत सिंह, भारत फिल्म से अभिजीत श्रीवास्तव, न्यूयॉर्क फिल्म से के, वजीर फिल्म से फरहान अख्तर और अमिताभ बच्चन, माय नेम इज खान फिल्म से राहत फतेह अली खान, शंकर महादेवन और रीचा शर्मा, मौसम फिल्म से शाहिद मालिया, जब तक है जान फिल्म से नीरज श्रीधर, क्रूक फिल्म से निखिल डिसूजा और थैंक गॉड फिल्म से जुबिन नौतियाल के आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे। शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग में सुनिए पंडित डीके दातार से वायलिन वादन कल शाम 4:30 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 4:45 पर तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। रोजाने की तरह मोनपा कार्यक्रम नमथर लेरिम में सुनिए महामहिम टुलकू तेंजिन ग्युरमे रिम्पोछे जी से आचार्य शांति देवा द्वारा रचित बोधिसत्व के जीवन पथ के मार्गदर्शन पर आधारित शिक्षाओं के श्रृंखला का 10वां भाग कल शाम 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मोनपा में। कल शाम 5:35 पर मोनपा में कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए साका दावा के अवसर पर मोनट्राती एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी द्वारा बुद्धा पार्क तवांग में आयोजित 7वें दिन का धर्म शिक्षण कार्यक्रम। मोनपा में कार्यक्रम लेरिम सेडा शाम 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। बौद्ध भक्ति वंदना का कार्यक्रम जेदनलेरिम में सुनिए मोनट्राती एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी द्वारा बुद्धा पार्क तवांग में आयोजित 7वें दिन का धर्म शिक्षण कार्यक्रम का शेष भाग कल शाम 6:20 पर। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 7 तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर कार्यक्रम आज की कविता में सुनिए विवेकानंदा केंद्रीय विद्यालय मोक्तो के 8वीं कक्षा के विद्यार्थी श्री तंजन गोम्बू से एक हिंदी कविता। फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से मैं आनंद लीजिए दिल का रिश्ता फिल्म के चंद नगमे कल शाम 7:11 पर। कल शाम 7:25 पर कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोक में सुनिए केंद्रीय बौद्ध सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान तवांग मठ के हिंदी शिक्षक शास्त्री लोपसांग तेंगिल जी से परम पावन 14वें दलाई लामा जी के 4 प्रतिबद्धताओं के विषय पर एक वार्ता। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज

7:50 पर। कल शाम 7:55 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमीय तराने में सुनिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो फिल्म का एक देशभक्ति नगमा। रात्रि 8 बजे आनंद लीजिए व्हाट्सएप फरमाइश शो पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा News@9 रात्रि 9 बजे। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। इसके साथ ही कार्यक्रम जरोखा अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा मोनपा में। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: 비시 무등합지는 다 무등합지 지소고도 이직 돈다가다 미지내야 무구통 지 미소처 지외에서 비독제소된다. 너무 지 비시에 뒤부터 좀 너무 비난시에 강한 강점만 있니 강한 강점니 너무 비시 상지님이 최저를 최하를 많이는다 최저를 많이. 지 상지시 쉽다 지직 다 구지마라 탐험어도 되게 임무. 백 무브리다 지 신다야 됩니다. 무브리다 지 상지 공수의 와가 비니입니다. 공수님의 상지.
1: 현재는 Desh sakadawa cistugu tigapka tawang putabalka sungji sanpipkan mimanshal kishi tutankinun si kyabdro kyuning yu kanglatene kyabsutowa kor jishinangu sanangumbur langyana utyapka deshik lungchinka tawang manbak lerimbana chazadidur agashvani tawang langye zambandab dikchuze nishwondur tangok shukbu lerim Akash Panateli Kareliya Shusu Nana Injige Siyu Ning Shuk Kintige Siyu Sanang Sa
0: Lungze Nime Lungze Nyanga Pinyi Lungze Nyanga Pinyi Bo Chikda Choma Bek Bo Tumida Klo Omda Klo Yaji Ko To Sisi Nima Nalmi Nyangam Chibjit Gangbo Kuru Ya Tsena Chikyone Soy Moda Omda Be Sangye Lungze Nyanga Nobe Bek Wanyin Jige Ganmati Omda Chi Utu Tap Sat Tak kau cina matang bul, sudah das mati rja kau ini dah sanjini macam apa lagi? Sanjini macam ia cik, tak mau bubu dah cik.
2: Kar, Akashwani Samachar ke saath, saya Munish Sharma. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से दो हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, शतावधानी डॉ आर गणेश, उदय सुरेश कुमार और डॉ कलीपट्टी रामासामी पाईस्वामी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जिन प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है उनमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में और तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही।
3: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में हैं।
4: Several key agreements were signed.
5: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से

0: Judicial Magistrate Ashwini Pawar convicted Lamba and fixed 5th of June to hear the arguments on Lamba's sentencing. The prosecution had accused Lamba, the president of the All India Mahila Congress, of obstructing police and blocking a public road while holding a protest at the Jantar Mantar on 29th of July 2024. In Tamil Nadu, political developments within the opposition AIADMK took a dramatic turn today as three MLAs belonging to the dissent group led by senior leader S.P. Velumani tendered their resignations from the assembly and joined the ruling Tamilaga Vetri Karagam or TVK. The resignations were submitted by Maragatham Kumaravel from Madurakatham, Jay Kumar from Perundurai and Satyabhama from Dharapuram. The National Investigation Agency NIA today conducted searches at three locations in Jammu and Kashmir in a terror funding case linked with the banned Jamaat-e-Islami organization. The searches conducted at three locations in Srinagar and Shopian districts of Kashmir led to the recovery of several incriminating financial documents and electronic gadgets suspected to be related with the activities of the Jamaat-e-Islami. The Norway Chess 2026 will begin in Oslo today with round one matches. For the first time in its 13-year history, the Super Tournament has moved from Stavanger to the capital city of Oslo. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:10 हुए हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है कृषि संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण। कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण में आज आप सुनेंगे कृषि विज्ञान केंद्र तवांग के बागवानी विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अभिमन्यु चतुर्वेदी से क्रूसीफेरी कुल के फसलों की वैज्ञानिक खेती के पद्धतियों के विषय पर हुई भेंट वार्ता। उनसे भेंट करता है दर्जी ड्रेमा।
2: नमस्कार, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण सुन रहे आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हमने हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में एक बार फिर कृषि विज्ञान केंद्र तवांग के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हॉर्टिकल्चर डॉक्टर अभिमन्यु चतुर्वेदी जी को आमंत्रित किया है। तो डॉक्टर अभिमन्यु जी, आपका एक बार फिर हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ।
3: धन्यवाद
2: जी। तो श्रोताओं, आज हम डॉक्टर अभिमन्यु जी के साथ चर्चा करेंगे सब्जी फसलों में रोग एवं कीट प्रबंधन विषय पर। डॉक्टर अभिमन्यु जी, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि रोग और कीट में क्या अंतर है तथा किसान यह कैसे पहचान सकते हैं कि फसल में रोग से प्रभावित है या फिर कीटों से?
3: बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रोग जो होते हैं ना, प्रमुख रूप से फंगस से होते हैं। फंगस हिंदी में कवक कहते हैं। और इनका जो काजल एजेंट होते हैं वो नंगी आंख से नहीं देखे जा सकते। बहुत ही माइक्रो लेवल पर इनको माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत होती है। इसके अलावा कुछ रोग निमेटोड्स से भी होते हैं, वो भी बहुत टीनी साइज में होते हैं, वो मिट्टी में होते हैं। और कोई भी फसल के संपर्क में आते हैं तो फसलों में बहुत सारे सिम्टम डेवलप होते हैं, जैसे कि पत्ती लाल होती है, पीली हो जाती है, ब्राउन कलर की हो जाती है, तो ये रोग हो गया। इसके अलावा कीट चूंकि आंख से देखे जा सकते हैं, कीट बड़े साइज के होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं। कीट के लार्वल स्टेज ज्यादातर फसलों को नुकसान करती है और कीट प्रमुख रूप से फसलों को किसी न किसी रूप में काटते हैं या पत्ती को काट देंगे, होल कर देंगे। इस प्रकार का लक्षण आता है, तो इस प्रकार से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रोग और कीट का।
2: क्योंकि हमारे यहाँ सब्जियाँ बहुत सारे उगाए जाते हैं, कई बार कई लोगों को ये पता नहीं चल पाते हैं कि उनके सब्जी में कुछ तो हुआ है, अच्छी नहीं आ रही है, कुछ या पीले पड़ गए हैं या कीड़े खा गए हैं। ये तो आपने बताया, देख सकते हैं ये जो कीट से जो प्रभावित है उसे तो देखा जा सकता है, लेकिन ऐसा है कि उनको पता नहीं चलता कि प्रभावित किस चीज से हुआ है या फिर इसके क्या इलाज करें, ये पता नहीं चलते हैं। तो अगर आप जैसे एक्सपर्ट हमारे इस कार्यक्रम में इन सारे चीजों का समाधान भी बताए जाए तो हमारे किसान श्रोताओं को बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। अगर हम विशेष रूप से तवांग के बारे में चर्चा करें तो तवांग में आपने देखे होंगे अब तक यहाँ पर मिर्चे बहुत लगाते हैं, चिल्ली फार्मिंग बहुत किया जाता है, विशेष रूप से हमारे यहाँ के जो लोकल मिर्चे होते हैं वो लगाते हैं। तो मिर्चे में कई बार ये समस्या आते हैं, पत्ते सूख जाते हैं, बड़े नहीं हो पाते हैं या फिर कीड़े खा जाते हैं, तो ऐसा करके बहुत सारे समस्याएं आने लगी। इसको कीट से प्रभावित होते हैं, रोग से कैसे पहचाने?
3: मिर्च में प्रमुख

0: समस्या जो है एक एंथ्रेक्नोज रोग होता है उसके कारण होता है। ये फंगस फफूंद से होने वाला ये रोग है। इसमें क्या होता है कि मिर्च की पत्तियां ना ब्राउन कलर के होके ट्विस्ट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। जब पत्तियां में ब्राउनिश हो जाएगा मीन्स उसका जो हरा कलर है ना वो कम हो जाएगा तो पत्तियां कमजोर हो जाएंगी। उसमें हरा कलर को भी कोई भी पौधे में होता है प्लांट में क्लोरोफिल के कारण होता है। फंगस क्या करता है कि ब्राउनिश कलर होने से मतलब क्लोरोफिल को के अमाउंट को कम कर देता है जिससे उनका फोटोसिंथेसिस से उनका जो खाना बनने की जो प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस वो स्लो पड़ जाती है और पौधा हमारा कमजोर हो जाता है जिससे हमारा मिर्च का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। पत्तियों के अलावा ये मिर्च की फली लगी है तो उसमें भी भूरे भूरे ब्राउन कलर के धब्बे बन जाते हैं जो कि बाद में काले भी हो जाते हैं और बड़े स्पॉट में हो जाते हैं। तो ये प्रमुख सिम्टम है, प्रमुख लक्षण है पहचान का कि ये हमारा एंथ्रेक्नोज रोग लगा हुआ है। इसका कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो है हम ऑर्गेनिक तरीके से इसका कंट्रोल करें, एक केमिकल का प्रयोग करके करें। तो जनरली तवांग में या पूरे अरुणाचल में हम ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि केमिकल का प्रयोग न हो तो ठीक है। तो ऑर्गेनिक तरीके से क्या है कि एक बीटी पाउडर होता है बैसिलस थुरिंजेंसिस, ये बायो कंट्रोल एजेंट होता है। इसका 1 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में 1 ग्राम पर लीटर वाटर डोज हिसाब से इसको जहां हमारा एंथ्रेक्नोज बीमारी लगी है वहां हम इसको स्प्रे कर सकते हैं जिससे कि रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। और 10 दिन बाद दोबारा हम इसका स्प्रे बीटी स्प्रे करना चाहिए, हमारा ये जो पत्तों का भूरा कलर है ये सब कम हो जाएगा। यदि रोग बहुत ज्यादा किसी पौधे में ज्यादा लगा है तो हम अपने खेती से उस पौधे को उखाड़ के खेत से दूर गड्ढा खोद के उसमें दबा के ऊपर से मिट्टी ढक दें, क्योंकि नहीं तो फंगस से पूरे खेत में ये रोग फैल सकता है।
1: जी, और वैज्ञानिक तरीके क्या हो सकते हैं मिर्च के जो बीज बुआई से पहले जो हम किए जा सकते हैं?
0: हाँ, सीड ट्रीटमेंट की जैसे बात आती है कि मिर्च में हम जब नर्सरी में बीज लगाते हैं उस समय हम मिर्ची के बीजों को ट्रीटमेंट कर दें और नर्सरी में लगाएं तब हम उनमें कुछ डिसीज रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारे पास दो तरीका है, एक है ऑर्गेनिक तरीका एक है इनऑर्गेनिक तरीका। दोनों लाभदायक है क्योंकि जहां तक हम लोग केमिकल से डरते हैं, केमिकल से डरना चाहिए लेकिन हर केमिकल का एक रेजिडुअल इफेक्ट होता है, एक टाइम बाउंडेड होता है। अधिकतम केमिकल 20 से 25 दिन बाद खत्म हो जाते हैं, उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। बाविस्टीन एक फंजीसाइड आता है फंगस को मारने वाला, 1 ग्राम दवा से हमारा 1 किलो तक बीज ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसमें क्या करना है कि उसके बीज के ऊपर चारों ओर दवा को अच्छे से छिड़क के हल्का सा पानी हो करके और मिक्स कर देना चाहिए ताकि वो बीज पर वो दवा चारों ओर से अच्छे से लिपट जाए तब हमको खेत में डालें। तो क्या हुआ कि उसके ऊपर एक कोटिंग टाइप में हो जाएगी, फंगस जो अटैक करते हैं तमाम प्रकार की बीमारी को उत्पन्न करते हैं उनका अटैक कम हो जाएगा। दूसरा है बायो कंट्रोल तरीके से, उसके लिए ट्राइकोडर्मा से भी हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, मतलब अगर 1 केजी मिर्च का बीज है तो 5 ग्राम, इसको भी इसी तरीके से 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा ऑर्गेनिक बायो एजेंट है मिर्च के बीज पर चारों पाउडर को छिड़क के हल्का सा पानी मार के मिक्स कर देंगे तो ये बीज में चिपक जाएगा। फिर हम बीज को नर्सरी में डालेंगे तो हमारा बीज हेल्दी उगेगा, जो मिट्टी में तमाम प्रकार के फंगस होते हैं अटैक करते हैं उससे हमारे नर्सरी में जो बीमारी नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा नर्सरी के दौरान ये हम उपयोग इसका कर सकते हैं।
1: अगर सब्जियों में कीटों से प्रभावित होने वाले हैं तो उसके शुरुआती लक्षणों को हम कैसे पहचाने, एक किसान उसे कैसे पहचाने?
0: कीट तो अलग अलग स्टेज पर लगते हैं, जैसे कि हम कोई भी फसल खेत में लगाएं तो एक कटुआ वो क्या करता है, जैसे मिर्चा लगाएं गोभी लगाएं खेत में नर्सरी से उखाड़ के मेन खेत में लगाएं तो पौधे नरम होते हैं। वो क्या करता है कि मिट्टी की सतह से बराबर में रात में निकलता है मेनली और काट देता है, तो जिससे हमारा लगाया वाला ही पौधा कट जाएगा तो आगे प्रोडक्शन तो होगा नहीं। के ट्रीटमेंट के लिए भी दो तरीका है, या तो नीम बेस्ड जो कुछ ऑर्गेनिक तरीके से मतलब कंट्रोल करने वाला निम्बी सिडीन वगैरह होता है उसका उपयोग कर सकते हैं, या किसान अगर केमिकल वाला रास्ता अपनाए तो उसके लिए फोरेट होता है, पेस्टिसाइड होता है उसका उपयोग कर सकते, फोरेट महीन दानेदार केमिकल होता है उसको खेत में जब हम पौधे लगाते हैं स्प्रेड कर देने से जो कटवर्म होता है वो मर जाता है तो हमारी खेती बच जाती
1: है। और जैसे कि तवांग एक पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पर मौसम बदलते रहते हैं, तो क्या बदलते मौसम से हमारे जो सब्जियाँ हम उगाते हैं उस पे कोई प्रभाव पड़ते हैं?
0: बारिश का मौसम ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है, गर्म ज्यादा होता है, उस समय जो कीट होते हैं उनका प्रकोप ज्यादा होता है। तो ह्यूमिडिटी स्पेशली जब गर्म मौसम और ह्यूमिडिटी में कीटों का मल्टीप्लीकेशन बहुत फास्ट होता है और कीटों का मेनली लार्वल स्टेज

0: 90% केसेस में लार्वल स्टेज डैमेज करती है हमारे खेत में। जो फीमेल फ्लाई होती है जो भी कीट की, वो एग लेइंग करती है। एग लेइंग के बाद अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग ड्यूरेशन होता है, कोई एक हफ्ता बाद, कोई 10 दिन बाद वो लार्वल स्टेज में आ जाते हैं। वही लार्वल स्टेज हमारे खेती को डैमेज करते हैं। कभी वो पत्ती पर रेंगते हुए खेतों में देखते हैं, हरे हरे होते हैं, कोई भूरे कलर के होते हैं, वो पत्ती पर जाते हैं, उनका कोई क्लोरोफिल समाप्त कर देता है। मतलब क्लोरोफिल मतलब हरा कलर जो पत्तियों का होता है, क्लोरोफिल से होता है, वो खा के समाप्त कर देता है। कभी क्या होता है कि पत्ती वो पूरा जाली जाली जैसा बना देता है। गोभी में स्पेशली पत्ता गोभी में देखिए, फूल गोभी में वो हरे हरे डायमंड नाम से कीड़ा होता है, डायमंड बैक मॉथ, वो क्या करता है, वो उसकी लार्वल स्टेज क्या होती है, वो फूल गोभी में जाके छेद कर देता है अंदर, तो वो भी हमारा नुकसान करता है। फूल गोभी में भी वही लार्वल स्टेज होती है, वो भी नुकसान करती है, तो उसका अलग से स्मेल, गंदी स्मेल आती है और फूलगोभी का क्वालिटी खराब हो जाता है। विभिन्न प्रकार से अलग अलग किस्मों में, बैगन में देखिए, बैगन में फ्रूट फ्लाई होती है, वो अंडे देती है, वो अंदर जब बैगन से उनका लार्वल स्टेज होता है, बैगन जब मैच्योर होता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जो कि खाने के लिए जब हम काटते हैं तो दुर्गंध आता है, हमारी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो ऐसे बहुत प्रकार से फल में भी होता है, सब्जियों में भी होता है, अवस्थाएं होती है कीटों की, स्टेजेस होते हैं और वो फसल को नुकसान करते हैं।
1: हमारे ये चर्चा जो है सब्जी फलों में रोग एवं कीटों से प्रबंधन किस तरह से किया जा सकता है, इसी पर हो रहे हैं। तो मैं ज्यादातर यहाँ पर जितने ज्यादा हर सब्जियाँ उगाते हैं इस पर केंद्रित करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी इस समय बहुत सारे लोग मिर्चे लगाते हैं, मैं फिर से कहना चाहूंगी। तो जब उसमें फल लगने के समय आते हैं तो जो मिर्चे उसमें लगते हैं उसमें कई बार मिर्चे जो है सिकुड़ जाते हैं, कभी उसमें काले धब्बे पड़ जाते हैं, कई बार फीके से रंग हो जाते हैं, गीले से हो जाते हैं, या फिर पानी से पड़ जाते हैं, ऐसा क्यों होते हैं? अगर इन सारे जो समस्या होते हैं इनको रोकथाम करने के लिए अभी हम क्या तरीका अपना सकते?
0: वही हम लोग जैसा कि अभी डिस्कस भी किए थे कि उसमें कुछ कीड़े से होता है, कीट से होता है, कुछ बीमारियों से होता है। तो कीट में अभी हमने जिक्र भी किया था कि जैसे डायमंड बैक मॉथ होता है, इसका लार्वा जो है हरे कलर का होता है और पत्तों को, क्लोरोफिल को, मतलब पत्ते के हरा पौधा को खा जाता है, जाली जैसे दिखता है। ये हमारा मिर्च में भी होता है, गोभी वर्गीय फसलों में भी ये होता है, बैगन में भी लगता है। तो इसका कंट्रोल के लिए हम ऑर्गेनिक तरीके से हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं। नीम बेस्ड जो एक हमारा प्रोडक्ट होता है, निम्बिसाइड या निम्बिसिडीन, अलग अलग कंपनीज का अलग अलग प्रोडक्ट नाम है। इसका डोज जो है 5 ml लिक्विड 1 लीटर पानी में, इस डोज से 5 ml निम्बिसिडीन पर लीटर वाटर हम स्प्रे करेंगे। जब भी हमको खेत में कीट दिख रहा है और उसका एक हफ्ता बाद फिर से दोबारा हम स्प्रे कर दें, तो हम ऑर्गेनिक तरीके से हम इन कीड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी खेती को बचा सकते हैं। इसके अलावा एफिड्स आते हैं। एफिड्स का प्रकोप जब ज्यादा गर्मी वाला मौसम होता है तब होता है। एफिड क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, बहुत ही छोटे, जैसे कि सरसों के दाने के बराबर। वो क्या करते हैं, पत्तियों के निचली सतह पर होते हैं और वो पत्तों का रस चूस लेते हैं। जब पत्तों का रस चूस लेंगे तो पौधे हमारे कमजोर हो जाएंगे, फिर उनमें फोटोसिंथेसिस वगैरह रेट कम हो जाएगा, मतलब पौधों की जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं वो कम हो जाएगी, तो हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो भी है उनका डेवलपमेंट कम हो जाएगा और हमारा खेती को नुकसान हो जाएगा। इसके लिए भी हम निम्बिसिडीन का उपयोग कर सकते हैं, 5 ml प्रति लीटर वाटर इस रेट के हिसाब से। कुछ कटवर्म्स हमने बताया था आपको, जो कि खेतों में जो पौधे अंकुरित हो रहे हैं वो, या नया रोपे गए पौधे, उनको नरम नरम पौधों को जमीन की सतह से काट देते हैं, उसमें भी हमारे खेती नुकसान हो जाता है। तो के लिए तो एक बीटी पाउडर होता है, बैसिलस थुरेंजिसिस, एक ये बायो पेस्टिसाइड है। उसका होता है कि 1 kg प्रति एकड़ की दर से, एकड़ तो बहुत बड़ा एरिया हो गया, या ऐसे कह सकते हैं कि अगर छोटा एरिया है तो 1 gram बीटी पाउडर 1 liter पानी, 1 gram पर लीटर वाटर। इस डोज से हम अगर इसको स्प्रे कर दे तो हम बीटी काटन को बायोलॉजिकल तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी।
0: बोरर्स होते हैं जो कि छेद कर देते हैं फल में, पत्तियों में, पौधों के तने में, स्टेम में छेद कर देते हैं, तो हमारे सब्जियों के पेड़ कमजोर हो जाएंगे, फ्रूट्स क्वालिटी खराब हो जाएगी। स्पेशली बैगन में बोरर का बहुत अटैक होता है, टमाटर में बोरर्स का अटैक होता है, तो हमारी क्वालिटी भी खराब हो जाएगी। तो इसमें भी जो हमने बताया कि बायो तरीके से अगर करना चाहें तो बीटी पाउडर का स्प्रे, 1 gram बीटी पाउडर 1 liter पानी में मिला के स्प्रे करें। एक बार में अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो 7 से 8 दिन बाद दोबारा हम स्प्रे कर सकते हैं।
1: पत्ता गोभी या फूल गोभी को लेकर चर्चा करें तो उनमें ऐसा एक बहुत असामान्य सा बाद में वो जाकर आकार लेते हैं और उनके जड़ों में एक गांठ जैसे पाए जाते हैं।
0: हाँ, ये रोग है, इसको हम बोलते हैं ब्लैक रॉट।

0: एक ब्लैक रॉट होता है, एक क्लब रॉट होता है। पहले क्लब रॉट में आते हैं। क्लब रॉट में क्या होता है कि गोभी वर्गीय फसलों की जड़ें फूल जाती, गेंदा के आकार के बॉल के शेप में हो जाती हैं। इससे भी क्या होता है कि पौधा कमजोर हो जाता है और हमारा प्रोडक्शन कमजोर हो जाता है। पौधा फूट के उसमें जड़ें फट जाती हैं, तो नीचे से न्यूट्रिएंट्स वाटर अपटेक कम हो पाता है, नहीं हो पाता है, तो हमारा प्रोडक्शन स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाएगा। हमको क्या करना है कि ट्राइकोडर्मा आता है, ये भी बायो कंट्रोल एजेंट है। इसका हम 10 ग्राम प्रति लीटर वाटर की दर से, जहाँ ऐसा दिख रहा है कि पौधों गोभी वर्गीय फसलों की में क्लब मतलब गोल गोल उनकी जड़ें हो रही हैं, तो वहाँ हमको स्प्रे कर देना चाहिए। ब्लैक रॉट की जो बीमारी आती है, दूसरी बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसमें क्या है कि जड़ों अंदर से खोखली हो जाती हैं, सड़ने लगती हैं, और इसका एक बहुत अच्छा लक्षण पत्तियों पर दिखता है। गोभी वर्गीय पत्तियों पर अंग्रेजी के वी, पीले रंग का वी आकार बन जाता है गोभी वर्गीय फसलों में। अगर अंग्रेजी का वी आकार अगर गोभी वर्गीय फसलों में हमें दिखे, हमको ये समझ जाना है कि इसकी जड़ें में ब्लैक रॉट है, एक फंगस है, वो अटैक कर दिया है।
1: पत्तों पर दिखेंगे?
0: हाँ, ये पत्तों पर दिखेंगे। इसका भी है कि बीटी काटन का छिड़काव करना चाहिए, बायो कंट्रोल एजेंट जो है एसिलेस्थुरिंजिस, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका स्प्रे करना चाहिए। इसका सबसे बेस्ट उपाय है कि जहां एक बार में ब्लैक रॉट का अटैक दिखे, वहां दोबारा हमको गोभी की फसल 3 साल तक नहीं लेनी है, फसल चक्र अपनाना चाहिए। बहुत खतरनाक बैक्टीरिया ये होता है, प्लस क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र अपनाना है। फिर एक है हमारा डाउनी मिल्डू आता है, पीला झुलसा रोग। इसमें क्या है कि हमारी गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, टमाटर वगैरह में भी हमारी ये बीमारी आती है। इसमें क्या है कि निचले पत्ते पर पीले पीले रंग के धब्बे मिल जाते हैं। जब पीले पीले धब्बे हो जाएंगे तो हमारे फसल कमजोर हो जाते हैं, इनकी वजह से हमारे जो पत्तियां झुलस भी जाती हैं, मुरझा भी जाती हैं। तो इसमें भी हमको ट्राइकोडर्मा का उपयोग करना चाहिए, 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसमें स्प्रे करने से हम पीला झुलसा रोग मतलब डाउन मिल्डू को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और हम जरूरी चीज ऐड कर दें कि झुलसा रोग ब्लाइट का भी प्रकोप बहुत होता है। यहाँ हमने जो देखा है आलू में प्रमुख रूप से लग रहा है, बैगन में भी लग रहा है, और टमाटर में भी लग रहा है, इनमें मेजर है, और मिर्च वगैरह में माइनर है। तो झुलसा रोग में क्या होता है कि पत्तियां जो हैं, चाहे आलू की हो चाहे टमाटर की हैं, पत्तियां किनारे किनारे से सिकुड़ जाती हैं और सूखने लगती हैं। पहले ब्राउन कलर की होंगी, फिर बाद में काले रंग के हो जाते हैं। और ज्यादा प्रकोप होने से आलू का खेत हो या बैगन का, टमाटर का खेत हो, दिखेगा कि पूरा पौधे एकदम मर से गए हैं, झुलस से गए हैं। ऐसा ज्यादा प्रकोप होने, ज्यादा अटैक होने पर ब्लाइट का ऐसा दिखेगा। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इसके कंट्रोल के लिए भी हमको ट्राइकोडर्मा का स्प्रे करना चाहिए, 10 ग्राम प्रति लीटर वाटर की दर से, ऑर्गेनिक तरीके से। और इसमें केमिकल का भी प्रयोग कर सकते हैं यदि ब्लाइट कंट्रोल ऑर्गेनिक तरीके से नहीं हो रहा है तो। क्योंकि ब्लाइट कंट्रोल 10 दिन में ही बहुत तेजी से, कहने का मतलब, हमारे फसलों को मार देता है, एकदम खत्म कर देता है। क्योंकि जो बायो कंट्रोल एजेंट है, बायो तरीके से थोड़ा स्लो प्रोसेस में इनका प्रभाव होता है। तो अगर किसान चाहें तो ब्लाइट कंट्रोल के लिए एक केमिकल का भी सजेशन कर सकते हैं, मैंकोजेब एक रसायन होता है, फंजीसाइड होता है, मैंकोजेब कॉपर का फंजीसाइड होता है। 2 ग्राम प्रति लीटर वाटर, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम, इसको मिला करके और हम स्प्रे करें। एक चीज बहुत जरूरी है, जब भी हम खेतों में कोई भी दवा या कुछ भी स्प्रे करें तो उसमें ध्यान दें कि तेज हवा ना चल रही हो, बारिश ना हो रही हो, ओपन फील्ड कंडीशन में। अगर पॉली हाउस में है तब तो ठीक है, नहीं तो बाहर ओपन फील्ड कंडीशन में तेज हवा चल रही है तो स्प्रे हमारा सही से नहीं होगा। अगर बारिश होने की संभावना है तो भी अभी हम स्प्रे करके जाएंगे, वो पानी गिरने से पूरा बह जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा, तो उसका भी पौधों में वो ट्रांसलोकेशन अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो भी हमारा वेस्टेज होगा, दवाई का प्रभाव अच्छे से नहीं होगा। तो इन सब बातों को भी हमको स्प्रे करते समय ध्यान देना।
1: कार्यक्रम के अंत में स्वस्थ लाभकारी एवं सतत सब्जी खेती के लिए आप सब्जी उत्पादक किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: अच्छे किस्मों का हम चुनाव करें, अधिक उत्पादन के साथ साथ हमारी बहुत सारे किस्में हैं जो कि बहुत सारे रोग और कीट रोधी रोग रोधी किस्में हैं। तो किसान भाई ऐसे किस्मों का चुनाव करें और तमांग के क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार वो किस्में हो, कम पानी में हो ताकि पानी की भी हमारी बचत हो, कम न्यूट्रिएंट वाले भी हो, इससे भी हमको न्यूट्रिएंट की भी हो। ऐसी बहुत सारी अनेक विभिन्न प्रकार के फसलों में सब्जियों किस्मों का विकास किसानों ने किया है जो कि डिजीज रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट और साथ में हाइडलिंग वैरायटीज हैं। ऐसा करने से हम अपनी लागत को कम कर सकते हैं, पर्यावरण

0: का भी इसमें ध्यान रख सकते हैं और हमारा खेती से होने वाली इनकम को भी बढ़ा सकते हैं। जब हमारा लागत कम होगा तो निश्चित रूप से हमारा इनकम बढ़ेगा।
1: तो आज आपने एक बार फिर हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में समय निकाल कर आए और हमारे किसान श्रोताओं को सब्जी फसलों में रोग एवं कीट प्रबंधन किस तरह से करनी चाहिए इस बारे में बहुत ही अच्छी जानकारियां दी। मैं आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कृषि विज्ञान केंद्र तवांग के बागवानी विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अभिमन्यु चतुर्वेदी से क्रूसीफेरी कुल के फसलों की वैज्ञानिक खेती के पद्धतियों के विषय पर हुई भेंट वार्ता। उनसे भेंट करता थे दोर्जी ड्रेमा। इसके साथ ही कृषि संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण अब समाप्त होता है।

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए वीर सैनिकों पर आधारित कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का पहला नगमा सुनिए, बाघ मिल्खा बाघ फिल्म से जावेद बाशीर और साथियों की आवाजों में, बोल प्रसून जोशी के और संगीत शंकर एजान लॉय का।

अगला नगमा पेश है राहत फतेह अली खान की आवाज में। सुल्तान फिल्म की इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का अंतिम नगमा सुनिए, ऊंचाई फिल्म से अमित त्रिवेदी की आवाज में। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है अमित त्रिवेदी ने।

ऊंचाई फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रादेशिक समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले सिविल इन्वेस्टिचर समारोह में अरुणाचल प्रदेश के प्रख्यात समाजसेवी तेची गोबिन को पद्मश्री से सम्मानित किया। गोबिन इस वर्ष पद्म पुरस्कारों के लिए चयनित 113 विशिष्ट हस्तियों में शामिल है। लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त चीफ आर्किटेक्ट से जाने वाले जनसेवा नेतृत्वकारी भूमिकाओं देशभर के जनजातीय समुदाय के समग्र विकास दोनी पोलो आस्था के संरक्षण तथा जमीन स्तर पर स्वदेशी परंपराओं के संवर्धन में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज जूनियर इंजीनियर्स संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 में सफल 404 अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश वितरण एवं सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की निष्पक्ष पारदर्शी और योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। ये परीक्षा अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग APPSC द्वारा आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री ने नव नियुक्त जूनियर इंजीनियर्स और उनके परिवारजनों को बधाई देते हुए कहा है कि ये उपलब्धि अभ्यर्थियों की मेहनत, योग्यता तथा परिवार के अटूट सहयोग का परिणाम है। उन्होंने कहा है कि पारदर्शी और समयबद्ध परीक्षा प्रक्रिया की सराहना भी की है। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि राज्य सरकार प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से नव नियुक्त इंजीनियर्स को फील्ड पोस्टिंग से पहले व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। जिला प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA कैपिटल ईटानगर ने निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आपात सुरक्षा एवं समन्वय उपयोग को तेज कर दिया है। कैपिटल उपायुक्त तोको बाबू, SP ईटानगर जुम्मार बासर सहित अन्य अधिकारियों की संयुक्त निरीक्षण टीम ने कल ईटानगर स्थित सिद्धार्थ विहार हॉल के पीछे भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर स्थिति का आकलन किया तथा तत्काल निवारक उपायों की समीक्षा की। भूस्खलन संभावित क्षेत्र से गंभीर खतरे को देखते हुए BNSS 2023 की धारा 152 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के तहत सिद्धार्थ होल के नीचे और आसपास रहने वाले निवासियों को 24 घंटे के भीतर संवेदनशील स्थान खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच DDMA ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्र की लगातार निगरानी की जा रही है तथा लोगों से प्रशासन का सहयोग करने और सुरक्षित स्थानों पर जाकर अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने अरुणाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराने का निर्णय लिया है, क्योंकि राज्य में निर्वाचित राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल आगामी 23 जून को समाप्त हो रहा है। आयोग ने निर्देश जारी किया है कि मतपत्र पर वरीयता अंकित करने के लिए केवल रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्धारित विनिर्देश वाले एकीकृत बैगनी रंग के स्केच पेन का ही उपयोग किया जाए। इसके अतिरिक्त किसी अन्य पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा। आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर चुनाव प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के पर्याप्त उपाय भी किए हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग APSCW ईटानगर राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से आगामी 29 मई को डिप्टी कमिश्नर कैंप कार्यालय IG पार्क ईटानगर में एक दिवसीय जनसुनवाई राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। आयोग ने कहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहतकर बुधवार से ईटानगर और जीरो के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। आयोग ने पीड़ित महिलाओं से आगे आकर वॉक इन शिकायत दर्ज करने तथा परामर्श प्राप्त करने के लिए जनसुनवाई में शामिल होने की अपील की। आम जनता को भी अपनी शिकायतों से संबंधित दस्तावेजों के साथ जन सुनवाई में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, ताकि शिकायतों का प्रभावी और त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। तवांग जिला पुलिस ने आज वेस्ट कमेंग जिले के बोमदिर नाला ब्रिज पर सघन ILP जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान राज्य में प्रवेश करने वाले पर्यटक वाहनों की ILP वाहन

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बजे हैं। श्रोताओं, अब सुनिए व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का पहला फरमाइश किया है पैगांग लो से पेमा टाशी, तंजन दावा, पासांग डुंडुप, तंजन सांगे, सोनम टाशी और फुनसो ने। आप सभी के फरमाइश पर प्रस्तुत है फूल और अंगार फिल्म से साधना सरगम और कुमार सानू का गाया गीत। रानी मलिक के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है अनु मलिक ने।

अगला फरमाइश प्राप्त हुआ है गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल खेत से तंजन लामू राधा जा ईशी वांगमू और तंजन डॉलकर सेरगिरिपा से चिच्चोर फिल्म का नगमा। इस नगमे को गाया है यीशुदास ने और बोल एवं संगीत दिया है रविंद्र जैन ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित चंद सदाबहार पुराने नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर। तोरोवल नवनशहर पंजाब से गंगादीप ठंडी, तृप्ता कुमारी ठंडी, डॉक्टर प्रियंका ठंडी, डॉक्टर प्रशांत ठंडी, डॉक्टर प्रियम ठंडी, बेबी वमिका और वाणी ठंडी के फरमाइश पर सुनिए सहरा फिल्म से लता मंगेशकर का गाया गीत बोल हजरत जयपुरी के और संगीत राम लाल का।

अगला नगमा सुनिए लोगर ठाकुरन वाला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, गुरनूर सिंह, शुभदीप सिंह, गुरलाल सिंह, गुरमान सिंह और अविराज सिंह के फरमाइश पर गिरफ्तार फिल्म से आशा भोसले और कुमार सानू का क्षमा करें किशोर कुमार का गाया नगमा बपी लहरी द्वारा संगीत इस गीत को लिखा है इंतवार ने।

कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का अंतिम फरमाइश किया है गोलाघाट आसाम से रोमेश पैट्रो रूनू पैट्रियो और लकी ने। आप सभी के फरमाइश पे पेश हैं आराधना फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है SD बर्मन ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित चंद सदाबहार पुराने नगमे। यदि आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक जरूर व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत और फिल्म का नाम अवश्य लिखें। इसके साथ ही आपकी फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय

रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज़ एट 9। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच ने किया जीत के साथ प्रतियोगिता का आगाज, जियोवानी पेरिकार्ड को हराकर दूसरे राउंड में प्रवेश किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। खेल क्षेत्र में 9 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। ओशोनिया चैंपियनशिप में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल 5 पदक जीते। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता जारी। ISSF राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप कल से जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित किया जाएगा। और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट आज से शुरू, डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा भारत का नेतृत्व करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुश्ती से, जहां वियतनाम में आज भी भारतीय कुश्ती पहलवानों का जो है लगातार पदक जीतने का सिलसिला जारी है। वियतनाम के दनांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। पुरुषों के फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय तानाजी धीरे और विक्की ने स्वर्ण पदक जीते। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय तानाजी धीरे ने यलमन अमान गिल्दी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में विक्की ने शिरजोद पोयोनो को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने विरोधियों को पटकनी देते हुए देश के लिए कई पदक अपने नाम किए। बचे हुए मुकाबलों में इन खिलाड़ियों से पदकों की संख्या बढ़ाने की पूरी उम्मीद है। सीधे चलते अब चर्चा करते हैं फ्रेंच ओपन पर। रोलैंड गॉरेस फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच ने प्रतियोगिता का आगाज जीत के साथ किया है। जोकोविच ने कड़े मुकाबले में शानदार वापसी करते हुए फ्रेंच के खिलाड़ी जियोवानी एम्पेट्सी पेरिकार्ड को हराकर पेरिस में दूसरे राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली।
1: 39 वर्षीय नोवाक जोकोविच ने लगातार 82वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम के मेन ड्रॉ में जगह बनाई है। इसके साथ ही उन्होंने रॉजर फेडरर और फेलिसियानो लोपेस के साथ साझा किया गया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब जोकोविच का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में रिकॉर्ड 80 जीत और सिर्फ 2 हार का हो गया है। नोवाक जोकोविच 2006 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद से किसी भी ग्रैंड स्लैम का पहला मैच नहीं हारे हैं। पेरिस में फ्रेंच खिलाड़ियों के खिलाफ उनका अब तक का रिकॉर्ड 13-0 है। पहले सेट में नोवाक जोकोविच को पेरिकार्ड की शानदार सर्विस के सामने एक भी ब्रेक पॉइंट नहीं मिला। फिर फ्रेंच खिलाड़ी ने जोकोविच की सर्विस तोड़ दी और सेट जीत लिया। इसके साथ ही वह 14 साल में पेरिस में जोकोविच से एक सेट जीतने वाले पहले फ्रेंच खिलाड़ी बने। इसके बाद जोकोविच ने पेरिकार्ड को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया और 2 घंटे 51 मिनट तक चले मुकाबले में 5-7, 7-5, 6-1 और 6-4 से जीत दर्ज करते हुए दूसरे राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
0: प्रतियोगिता में जहां नोवाक जोकोविच, यानिक सिनर, अलेक्जेंडर ज्वेरेव जैसे प्रतिष्ठित खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते नजर आ रहे, वहीं कार्लोस अल्काराज चोट के कारण प्रतियोगिता से बाहर हो गए। अगर हम भारतीय खिलाड़ियों की मौजूदगी भले ही इस प्रतियोगिता में सीमित हो, लेकिन आने वाले दिनों में पेरिस की क्ले कोर्ट पर करोड़ों भारतीय निगाहें यूकी भांबरी, श्रीराम बालाजी और जूनियर खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वर्ष 2026 के लिए 9 पुरस्कार खेल के क्षेत्र में

0: किए गए। टेनिस में विजय अमृतराज को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं पद्मश्री पुरस्कार क्रिकेट में रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को दिया गया। वहीं हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया और हॉकी कोच बलदेव सिंह को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को ऊंची कूद में पद्मश्री पुरस्कार मिला, जबकि भगवान दास रैकवार को मार्शल आर्ट्स में और के पजनीवेल को सिलंबम में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा कुश्ती कोच व्लादिमीर मेस्त्रिस्ली को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
1: सुश्री हरमनप्रीत कौर भुल्लर खेल क्रिकेट, श्री प्रवीण कुमार खेल एथलेटिक्स दिव्यांग, श्री के पजानीवेल खेल सिलंबम।
0: समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और एचडी कुमार स्वामी सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। बात कर लेते ओशेनिया चैंपियनशिप में, जहां कल भारत ने कई पदक अपने नाम किए। जापान में आईएयू 24 एच एशिया और ओशेनिया चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 5 पदक जीते, वहीं पुरुषों के व्यक्तिगत इवेंट में क्लीन स्वीप किया।
2: भारतीय पुरुष टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए व्यक्तिगत पोडियम पर कब्जा किया और कुल 815 से अधिक किलोमीटर की दूरी तय करके टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। 23 से 24 मई तक 24 घंटे की कड़ी रेसिंग में टॉप अल्ट्रा रनर्स ने अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पार किया। अमर सिंह देवंदा ने करीब 283 किलोमीटर की शानदार दूरी के लिए 226 लैप पूरे करके स्वर्ण पदक जीता। वहीं गिनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया। मेजबान देश जापान ने मासा की मोतो की अगुवाई में टीम स्पर्धा में सिल्वर अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया ने इसी स्पर्धा में कांस्य पदक पर कब्जा किया। महिला वर्ग में भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीता। जापान की मीहो नाकाता ने 261 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए व्यक्तिगत गोल्ड मेडल 20 किलोमीटर के बड़े अंतर से जीता। उनके प्रदर्शन की वजह से जापान की महिला टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया ने रजत पदक अपने नाम किया। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
0: टॉप अल्ट्रा रनर्स ने अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पार करते हुए व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में न सिर्फ पदकों की संख्या बढ़ाई बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान भी बढ़ाया। अब सीधे ले चलते आपको झारखंड की राजधानी, जहां 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता जारी है। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता जारी है। आज का दिन भी रिकॉर्ड और पदकों के लिहाज से बेहद शानदार रहा है। स्टेडियम में मौजूद हमारी संवाददाता महवीश रहमान सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। महवीश
3: जी,
0: फेडरेशन कप के चौथे दिन आज मैदान पर कैसा रोमांच देखने को मिला? हमारे श्रोताओं को आज के मुख्य परिणामों के बारे में बताइए।
3: जी प्रशांत, आज चौथे दिन मैदान पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। आज कई राज्यों के स्टार एथलीटों ने पदक जीतने के लिए अपना पूरा दम लगा दिया, जिससे दर्शकों को बेहद करीबी और रोमांचक मैच देखने को मिले। आज की सबसे बड़ी खबर दौड़ और हाई जंप स्पर्धाओं से आ रही है, जहां नए विजेताओं ने बाजी मारी है।
0: जी बिल्कुल, तो हमारे खेल प्रेमियों को ये भी बताइए कि आज महिलाओं और पुरुषों की इन मुख्य स्पर्धाओं में किसने बाजी मारी है।
3: आज महिलाओं की 500 मीटर दौड़ में रिलायंस की स्टार एथलीट सीमा ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। सीमा ने कल भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। वहीं पुरुष वर्ग की 500 मीटर दौड़ में कर्नाटक के शिवाजी परशुरामा सबसे आगे रहे। इसके अलावा महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में हिमाचल प्रदेश की कुसुम ठाकुर, जबकि पुरुषों में अनिमेश कुजूर जो हमारे स्टार धावक हैं उन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया। पुरुषों की 400 मीटर हर्डल में तमिलनाडु की आर विथाया रामराज ने बाजी मारी, जबकि महिलाओं के हाई जंप में उत्तर प्रदेश की ख्याति माथुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है।
0: महवीश, ये प्रतियोगिता कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी काफी अहम मानी जा रही है, तो इस प्रतियोगिता में अब तक कुल 12 खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आज के इस शानदार प्रदर्शन का आगे क्या असर देखने को मिल रहा है?
3: जी, जैसा कि हम सब जानते हैं जो यहाँ क्वालिफाई कर रहे हैं वो कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलेंगे। तो प्रतियोगिता के शुरुआती दिन में गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके और तेजस्वी शंकर ने जो नेशनल रिकॉर्ड बनाए थे उसका उत्साह आज चौथे दिन भी खिलाड़ियों में साफ दिखा। आज

0: भी बिठाया, रामराज, ख्याति माथुर, सीमा और शिवाजी जैसे खिलाड़ियों ने उनकी जीत ने साबित कर दिया है कि भारतीय एथलेटिक्स का भविष्य बेहद सुरक्षित हाथों में है। इससे पहले कल पुरुष पोल वॉल्ट में मध्य प्रदेश के देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार ने 5.45 मीटर की ऊंचाई पार कर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। काउंटडाउन नियम से देव कुमार को स्वर्ण और कुलदीप को रजत पदक मिला और दोनों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन से तो हमें आगामी प्रतियोगिताओं के लिए देश को कई मेडल की उम्मीदें अब जाग गई हैं।
1: जी महवेश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्रतियोगिता पर विस्तृत जानकारी हमारे साथ साझा की। ISSF राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप 26 से 31 मई के बीच जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित किया जाएगा। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की चयन समिति ने 22 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित कर दी है। इस टीम में ओलंपिक में दो पदक अपने नाम कर चुकी मनु भाकर और उनकी साथी ओलंपियन और विश्व चैंपियन पदक विजेता ईशा सिंह शामिल हैं। एक नज़र भारतीय निशानेबाजों पर।
2: इस प्रतियोगिता की शुरुआत 25 मीटर पिस्टल विमेन्स प्रेसिजन स्टेज इवेंट से होगी। इसके साथ ही 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष वर्ग का क्वालिफिकेशन राउंड और महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन का एलिमिनेशन राउंड भी शुरू होगा, जिसके बाद 10 मीटर एयर राइफल मेंस इवेंट के लिए क्वालिफिकेशन राउंड होगा। पहले दिन दो फाइनल मुकाबले होंगे। इन इवेंट्स में 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस और 10 मीटर एयर राइफल मेंस शामिल है। इस विशेष कप के लिए 80 देशों के कुल 696 एथलीट्स ने दावेदारी पेश की है। भारतीय टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का एक बेहतरीन मिश्रण है। दो बार की ओलंपियन और पूर्व एशियन गेम्स की चैंपियन राही सरनोबत म्यूनिख में सबसे सीनियर भारतीय निशानेबाज होंगी। अन्य अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजों में मौजूदा विश्व चैंपियन सम्राट राणा, पूर्व विश्व चैंपियन रुद्रांश पाटिल, वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट अनीश भानवाल, वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट एलाविनिल वलारिविन, वर्ल्ड कप फाइनल विजेता सुरुचि सिंह और मौजूदा म्यूनिक मिक्स टीम चैंपियन अर्जुन बबूता शामिल है। भारत की तरफ से पहली बार हिस्सा लेने वालों में पुणे की 22 वर्षीय साक्षी पाड़ेकर है। दूसरी तरफ 18 वर्षीय सूरज शर्मा म्यूनिक में भारत की तरफ से पहली बार हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों में सबसे युवा है। वहीं 23 वर्षीय अजेंद्र सिंह चौहान ने घरेलू प्रतियोगिताओं में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम में जगह बनाई है। म्यूनिक में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा के साथ भारत के लिए अपने पहले ओलंपिक इवेंट में हिस्सा लेंगे। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: नॉर्वे के ओस्लो में आज से शतरंज टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा की मौजूदगी में भारतीय दल टूर्नामेंट में खिताब के अपने सूखे को खत्म करने की कोशिश करेगी। बात आईपीएल पर, आईपीएल के लीग मुकाबलों के कल समापन के साथ ही प्लेऑफ की चार टीम फाइनल हो गई हैं। प्रतियोगिता में अब तक कई रिकॉर्ड्स बने और कई ध्वस्त हुए। जानते हैं अब तक खिलाड़ियों का कैसा रहा प्रदर्शन।
3: अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर मौजूद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला क्वालिफायर वन में दूसरे स्थान पर काबिज गुजरात टाइटंस से 26 मई को धर्मशाला में होगा, जबकि तीसरे और चौथे स्थान पर मौजूद सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला एलिमिनेटर में 27 मई को न्यू चंडीगढ़ में होगा। क्वालिफायर वन जीतने वाली टीम को सीधे फाइनल में एंट्री मिल जाएगी। वहीं क्वालिफायर वन में हारने वाली टीम और एलिमिनेटर में जीतने वाली टीम का मुकाबला 29 मई को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इस मैच को जीतने वाली टीम को फाइनल में जगह मिलेगी। फाइनल मुकाबला 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। हम ऑरेंज कैप की रेस की बात करें तो वहां साई सुदर्शन 638 रनों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं 616 रनों के साथ शुभमन गिल दूसरे, हेनरी क्लासन 606 रन के साथ तीसरे और केएल राहुल 594 रन बनाकर चौथे स्थान पर हैं। वैभव सूर्यवंशी 583 रनों के साथ पांचवें स्थान पर हैं। पर्पल कैप के लिए भुवनेश्वर कुमार 24 विकेट और बेहतर इकोनॉमी के साथ पहले, कासिगो रबाडा 24 विकेट के साथ दूसरे, जोफ्रा आर्चर और अंशुल काम्बोज 21 विकेटों के साथ तीसरे और चौथे स्थान पर हैं।
1: और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण
2: डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथधारी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
4: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस एंड
5: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक

0: गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
2: सेवरल की अग्रीमेंट्स वर साइंड।
3: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
0: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
4: अगेंस्ट द असेसमेंट ऑफ
5: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
4: Like metric tons of imports have reached our shores.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्वभर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमानगेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

तभी आप सुन रहे थे न्यूज एट 9। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 9:15 हुए हैं। चलिए श्रोताओं, अब आपको हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले चंद कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात, मोनपा में विशेष कार्यक्रम कल शाम 5:35 पर। कल शाम 7:11 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग कल शाम 7:25 पर। जी हां, तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से।